और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। ये लोग जिस शगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा है। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं? हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: हाणे बमबारी वसीले ईरान सां ॻाल्हियूं कंदासीं। ईरान ते अॼु राति थींदड़ हमला सिफारती पोज़ीशन खे बहितर बणाईंदा। ईरान खे कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार हासिल करणु न ॾींदासीं। आबदाह हुर्मुज़ जो कंट्रोल बि अमरीका वटी रहंदो। अॼु राति ईरान जे अहम स्ट्रेटेजिक हंधनि खे तबाह कयो वेंदो। हिन भेरे हमला सख़्त ऐं वाज़ हूंदा। ईरान अमरीका खिलाफ़ जवाबी कार्रवाई शुरू करे छॾी। अरबेल में अमरीकी अॾे ते हमिलो, रेडार निज़ाम तबाह। आबदाह हुर्मुज़ में अमरीकी फ़ौज ऐं पासदारनि इनकलाब विच में चक्र जो सिलसिलो जारी। ईरानी मीडिया मूजिबि आबदाह हुर्मुज़ वेझो अमरीकी जंगी ॿेड़नि खे मीज़ाइल ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो वियो। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त हथियार बंदि फ़ौज मुकमल तौर तयार आहे। अमरीकी अगराई जो भरपूर जवाब ॾिनो पियो वञे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे कंट्रोल रूम में ईरान ते हमले बाबति काबीना मेंबरनि जी ब्रीफिंग। नायब सदर जेड वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडकल्फ, ज्वाइंट चीफ चेयरमैन जनरल डेन केन, स्टीव विडकोव ऐं ॿिया आला अमलदारनि सदर ट्रंप खे ताज़नि हमलनि बाबति आगाह कयो। अमरीकी मीडिया मूजिब इजलास में मुख़्तसिर वक़्त ईरान ते वॾे पैमाने ते हमलनि जी मंज़ूरी ॾिनी वई, जीअं ईरान खे मुआहिदे लाइ झुकाए सघिजे।

बम हमलनि जा जंग सां ईरानी क़ौम खे झुकाए नथो सघिजे। सिफ़ारतकारी खां पोइ ते नायूं हटिया, पर जंग जो जवाब जंग सां ॾींदासीं। ईरानी सदर जो ट्रंप जे धमकियुनि ते रद अमल। मसूद पज़ेशकियान चयो त गज़ा एतिरो नंढो आहे, अॼु ताईं हुन खे शिकस्त नाहे ॾेई सघिया। ईरान त एॾी वॾी क़ौम आहे, उनखे शिकस्त कीअं ॾींदा।

क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल वफ़ाक़ी ज़रूरतूं पूरियूं करण लाइ वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे तरक़ियाती प्लान में 929 अरब रुपियनि जी कटौती करे छॾी। 126 अरब रुपियनि जी कटौती खां पोइ वफ़ाक़ी तरक़ियाती बजट घटिजी 1000 अरब रुपया थी वई। सूबाई तरक़ियाती प्लान में बि 800 अरब रुपियनि जी घटिताई। 557 अरब रुपियनि जी कटौती खां पोइ पंजाब जे तरक़ियाती बजट घटिजी 749 अरब रुपया थी वई। सिंध जे तरक़ियाती प्लान मां 137 अरब रुपया काटा। सूबे जे तरक़ियाती बजट 706 अरब रुपया थी वई। केपी जे तरक़ियाती बजट 109 अरब रुपया घटाइत खां पोइ 450 अरब रुपया मुख़्तस कई वई। बलोचिस्तान जे तरक़ियाती बजट 308 अरब रुपया बरक़रार। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में अहम मुआशी हथबंदि जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। वसीलनि जे मुनसिफ़ाणे विर्श करण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त मुश्किलातुनि बावजूद IMA प्रोग्राम ते अमल करे रहिया आहियूं। ख़िते जी सूरत हाल सबब तेल जूं क़ीमतूं बि आसमान ते पहुतल आहिनि। मुश्किल हालतुनि में बि आवाम खे रिलीफ ॾींदासीं। उमरान इताद विच में ईंदड़ माली साल लाइ तरक़ियाती फंड वधाइण ते इतफ़ाक़। इसहाक़ डार जी सदारत हेठि टेक्निकल कमेटी जूं ॻाल्हियूं कामयाब। सूबनि पारां नए माली साल जे वाधो टैक्स आमदनी मर्कज़ खे ॾियण करण ते इतफ़ाक़। नज़रनि जो चवणु आहे त NFC तहत क़ौमी वसीलनि जे विरासत वारे फार्मूले में का बि तब्दीली न कई वेंदी। सूबा हलंदड़ माली साल जे आमदनी जे हिसे मां वाधो रक़म वफ़ाक़ ॾींदा। पाणी जे वसीलनि जे वॾनि मनसूबनि खे जल्द मुकमल करण लाइ सूबा मर्कज़ खे 1200 अरब रुपया ॾींदा। मर्कज़ मनसूबनि जे मुकमल थियण खां पोइ सूबनि खां वरितल वाधो फंड वापसि कंदो। पंजाब 620 अरब, सिंध 310 अरब, KP 180 अरब ऐं बलोचिस्तान 85 अरब वफ़ाक़ ॾींदो। क़ौमी इक़्तिसादी सर्वे अॼु पेश कई वेंदी। ज़रनि मूजिबि हलंदड़ माली साल अक्सर हदफ़ हासिल न थी सघिया। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ़ 4.2% हो। फ़ी फर्द जे सालियाने आमदनी वारो हदफ़ बि पूरो न थी सघियो। फ़ी फर्द आमदनी 5,33,000 रुपियनि ताईं महदूद रहण जो इम्कान।

0: ज़रात ऐं सनती शोबे जे तरक़ी वारा हदफ़ बि हासिल न थी सघिया। ज़रई शोबे जे उबूरी कारकर्दगी 2.99% रही, हदफ़ 4.5% हो। पाकिस्तान आर्मी जो हेलीकॉप्टर मुज़फ़्फ़राबाद वेझो हादसे जो शिकार हेलीकॉप्टर में सवार समूरा अहलकार शहीद। ISPR चयो आहे त MI-17 हेलीकॉप्टर फनी ख़राबी सबबि हादसे जो शिकार थियो। हादसे जे नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार समूरा अहलकार शहीद थी विया। हादसे जो कारण मालूम करण लाइ जांच कई पई वञे।
1: ऑफिस में आज बहुत बुरा दिन गुज़रा।
2: चल अब तुम रिलैक्स कर।
0: सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लाड़काणो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे 14 मई खां पोइ थियल समूरनि इम्तिहाननि, टेस्टनि ऐं इंटरव्यूज़ जा नतीजा रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। 14 मई 2026 ते जारी थियल नोटिफिकेशन बि मुअतल। अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन जी मुक़ररी ऐं भर्तियुनि बाबति कानूनी तरीक़ेकार ते बि सवाल उथारे छॾिया। सिंध हाई कोर्ट जे 2 रुकनी बेंच SSPC बाबति आईनी दरख़्वास्त लिखित में ऑर्डर जारी कंदे 14 मई खां पोइ थियल इम्तिहाननि, टेस्टनि ऐं इंटरव्यूज़ जा समूरा नतीजा इल्तवा हेठि रखण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत हुकुम ॾिनो त इदारे जा रुगो रोज़मर्रा जा मामला हलाया वेंदा, कंहिं बि इम्तिहान, टेस्ट या इंटरव्यू जे नतीजनि जी मंज़ूरी या ऐलान न करे सघिबो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
5: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार,

0: बीप का अला बीप करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रर।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: की आवाज। बाय बायोकॉन इंटरनेशनल
1: सिंध का है ये अब्दाज, सहजली और मेहमान नवाज।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Manis ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki.
2: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम। खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दूसरा भी, रफ्तार भी, बैंक वाला भी, रिश्ता भरोसे का।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिफाई फिजाई निज़ाम मोहतरक आर्मी की जंगी जंगवारे वजीर पेट हेक सच्चा वायद अस हाँ बमबारी वसीले ईरान से गाल कदी के बेहतर पढ़ाई ईरान के कें भी सूरत में एटमी हथियार हासिल कर डींदी अपना फर्मस जो कंट्रोल भी अमरीका वट ही होंद अज रात ईरान के अहम स्ट्रेटिक हनन के तबाह किया वो इन भेरे हमला सख्त वाजे होंदा।

0: दादू के कच्चे वारे इलाके केटी केला जतोई में घटी के मामले ता
1: लाल जेड़ो मरीब राजी बेंद्र में जेड़ो फायरिंग में बजना कतल ब जख्मी थी पिया माजी बलन में इमामदीन मरी साबर जतोई शामिल एसएसपी मूजिब लाश खणण वारी सूरतहाल ते जाब्ते लाइ मुख़्तलिफ़ थाणनि जे नफ़री इलाक़े में उमाणी वई आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
4: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे,
5: बिछड़े थे आंसुओं में डूबे थे।
6: आंखों से निकला हुआ हर पानी आंसू नहीं होता।

0: कैसा महसूस हो रहा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10:45.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: 45 AM This time check is brought to you by
3: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तआन रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: भरपूर जवाबी कार्रवाई, कुवैत बहरीन इराक में अमरीकी फौजी अड़न ते हमला। पासदरान इनकलाब चे वाहिद कुवैत चे अलील इस्लाम बहरीन में अहमद अल जाबर अडे इराक में अरबिल फौजी अडे के निशानो बणायो आहे। मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमलनि जो पहिरियों मरहलो मुकमल थी चुको आहे। दुश्मन ॿीहर अगराई कई, जवाब पहिरें खां वधीक सख़्त हूंदो। अपने हुर्मज़ में अमरीकी फ़ौज ऐं पासदरान इनकलाब विच में चक्रनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरानी मीडिया मूजिबि अपने हुर्मज़ वेझो अमरीकी जंगी वेड़नि खे मिज़ाइल ऐं ड्रोन सां निशानो बणायो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल रूम में ईरान के हमले बाबत काबीना मेंबरन की ब्रीफिंग। नायब सदर जी डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डेन केन, स्टीव विटकॉफ ए बिया आला अमलदार सदर ट्रंप के ताजन हमलन बाबत आगाह किया। अमरीकी मीडिया मौजूद इजलास में मुख्तसर

झेड़ो जतोई मरी प्राजी बिंदुड़ में झेड़ो थो फायरिंग में बजना कतल ब जख्मी थी पाया मार्जिवलन में इमामदीन मरी ए साहब जतोई शामिल एसएसपी मौजूब लाश खान सूरत हाल के जब्ते लाइ मुख्तलिफ़ थाना नफरी इलाके में उमाणी वही है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

इसके अलावा वो तमाम तो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लेट द नेवर अपने गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बबल खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। वो तमाम तो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है उनको कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे बरसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगले, जी आया नू, सद बिस्मिल्लाह, बोंजोर जाओ, नी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है ही प्यार है, ये प्यार है। तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप प्रोग्राम में मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी के साथ हम चलेंगे आगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है।

आओगे जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरह का कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 और मेरे ख्याल से शायद अभी तक वहां पे पोस्ट अपडेट नहीं की गई. मैं चेक कर लेती हूँ, अगर तो की गई है देन हम उसको ओपन कर लेते हैं. हाँ जी, पोस्ट आ चुकी है. पोस्ट को आप देखेंगे, पेज के ऊपर होगी जिंदगी गुलजार है की पोस्ट जो कि आपको नजर आ जाएगी. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ इसको शेयर कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के बाद हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने में. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Ab aapki khubsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिस्म में ताकत आई गई।
2: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलो दो
1: यू मिलन

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
0: वेलकम बैक वंस अगेन, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार। आपको और मेरा साथ पूरी पूरी 1 बजे तक का है और सुर लगाओ गाना सुनाओ हमारा सेगमेंट है और इस सेगमेंट में नेक्स्ट कॉलर रिसीव करने जा रहे हैं हम। हेलो।
3: हेलो, अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग और कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट कॉलर, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
4: सलाउद्दीन बात
0: कर रहे हैं। हेलो, सक्खर से सलाउद्दीन बात कर रहे हैं, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
4: जी जी, पहली बार।
0: ओके, प्रोग्राम सुनते हैं?
4: जी जी, सुन रहे हैं।
0: ओके, और गाना सुनाएंगे?
4: अता वाला गाना सुनाओ।

0: संग्रार से बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुनते हैं?
1: जी।
0: कौन सा प्रोग्राम है ये?
1: प्रोग्राम का पता नहीं।
0: पता नहीं है तो फिर सुनते कैसे हैं? 01 3 4 88 इसके ऊपर कॉल

0: थैंक्स टू कॉलर रिसीव करेंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो हेलो
1: तमन्नाओं की दुनिया यूं तो हर इंसान बताता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है. तकदीर बनाने वाले ने तो कमी ना की, अब किसको क्या मिला किसको क्या, ये तो मुकद्दर की बात है. अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम सलाम सागर भाई, कैसे ठीक ठाक.
1: खैरियत करे ठीक ठाक करे ठीक है ना आपने
0: जी.
1: नहीं आप गाना तो सुनाते हैं, मैंने रात भी नहीं सुना
0: सुनाते आपके गाने.

0: अच्छा सागर भाई, एक बात बताऊं, ये वाला गाना जो है ना, मैंने अभी सर्च किया है और ये बॉलीवुड का गाना है, पाकिस्तानी नहीं है।
1: बॉलीवुड का है?
0: यस।
1: पाकिस्तानी है भाई?
0: नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, ये किशोर कुमार का गाना है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: तो पाकिस्तानी सुना देता हूँ।
0: पाकिस्तानी मुझे आप बता दें कौन सा प्ले करूँ, जल्दी
1: सुनाओ। नहीं
0: नहीं सुना ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। आपका गाना हम चला देंगे, जितनी देर में आप सुनाएंगे मैं आपको प्ले करके सुना भी दूंगी। ठीक है, जल्दी से बता दें। आ जा वे माहिया, किसकी आवाज में?
1: नुसरत फतेह अली खान का है। आ जा वे माही तुम वकिया उड़ी दुनिया।
0: ओके, आ रहा है, अब इसको सुने, एंजॉय करें और मेरा साथ दें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज। ये रहा गाना।

ओके जी, वेरी नाइस सॉन्ग. और इसके साथ साथ सिस्टर है वो है फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. ठीक है, ये कहना है, ये कहने की प्रैक्टिस करें और करना शुरू करते हैं. और जब हमारा अगला सेगमेंट होगा अगले घंटे में, दैट इज बोलो तो माने, उसमें ये आपसे सुना जाएगा और देखेंगे कि कौन आके सही सही और अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कहता है. सो इसी के साथ नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे. द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल. गाने के साथ जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: रिश्ता भरोसे का।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इस अदालत चीफ जस्टिस जाया आफरीदी का दो जुडिशल कमीशन इजलास में कमीशन रूल की मंजूरी जो इम्कान जुडिशल काउंसिल के इजलास में जजिस खिलाफ शिकायतों को जायजो वरतो वेंदो। कौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती सुधारन जो जायजो वरतो वेंदो।

कॉमिक्स तादी सर्वे अॼु पेश कई वेंदी। ज़रनि मूजिब हलंदड़ माली साल अक्सर हदफ़ हासिल न थी सघिया। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ 4.2%। फीफर जो सालानी आमदनी वारो हदफ पूरो न थी सघियो। फीफर आमदनी 5,33,000 रूपयनि ताईं महदूद रहण जो इम्कान। ज़रात ऐं सनती शोबे जी तरक़ी वारो हदफ हासिल न। ज़रई शोबे जी अबूरी कारगर्दगी 99% रही, हदफ 4.5% हो। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे 2026 पंजवीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे पेश कई। सुप्रीम जुडिशनल कमीशन जुडिशनल काउंसिल ऐं क़ौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास अॼु थींदा। टिन्ही इजलासनि जी सदारत चीफ जस्टिस जया आफरीदी कंदो। जुडिशियल कमीशन इजलास में कमीशन रूल जी मंज़ूरी जो इम्कान। जुडिशनल काउंसिल जे इजलास में जजिस ख़िलाफ़ शिकायतुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। क़ौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती सदारनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो।

अमरीकी हमलन बाद ईरान अपना हुर्मज मुकम्मल तौर से बंद कर छो। अमरीका खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई, कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फौजी अडन से हमला। बासरान इनकलाब चवैत कुवैत के अली इस्लाम, बहरीन में अहमद अल जबायर अडे और इराक में अरबिल फौजी अडे के निशानो बढ़ाया। मिजाइल और ड्रोन हमलों को पर्यो मरेलो मुकम्मल चुको है। दुश्मन बीहर आगराई कई तो जवाब पहरें का सख्त हों। आबना हुर्मज में अमरीकी फौज और पासरान इनकलाब विच में चकरियों का सिलसिलो जारी है। ईरानी मीडिया मूजिब आबना हुर्मज वेझो अमरीकी जंगी बेड़न के मिजाइल और ड्रोन से निशानो बनाया। अमरीकी फौज आ ईरान में दिकमल करण काम जो चवण है। अमरीकी फौज ने ईरान में वसलाती निजाम में फिजाई दिफाई निजाम स्ट्रेटजिक हनन के निशानो बढ़ाया। अमरीकी मीडिया मूजिब यह हमला अमरीकी फौज ए कमर्शियल जहाजन के खतरन के जवाब में किया गया। तेहरान फारस के जजीरे बंदर अब्बास कशम गरगान बंदरगाह हिंगाम मिनाब ए सिरक से बमबारी कई वही। अमरीकी जंग वाले वजीर पेट हेंग सेप्थ है तो असा हाँ बमबारी वसीले ईरान से गालू कंदी। ईरान से ताजा हमला सफारती पोजिशन के बेहतर बढ़ाईन्दा। ईरान के कें भी सूरत में एटमी हथियार हासिल कर नींदी। अब न हो रो अज रात ईरान के अहम स्ट्रेटिक हंधन के तबाह कर वो। इन भेरे हमला सख्त ए वाजे हूंदा।

अमरीकी सदर जी ब्रीफिंग ऑफ स्टेट मार्कूब सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडकल ज्वाइंट चीफ अमरीकी मीडिया मौजूद इजलास में मुख्तसर वक्त ईरान से वे पैमाने हमलों की मंजूरी डी वही जी ईरान के मुआवजे ला झुकाए सकें।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ताडो सुठो
3: जीए FM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं सिंपली और कमेंट कर सकते हैं. कमेंट करने के साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000 11 34 88. आज का जो टंग ट्विस्टर है डैड इज, जो कि आप लोगों ने कह के दिखाना है, फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किया.

ये ठीक है, ये कहना है फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए, इसको कह के दिखाएंगे तो जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को। ठीक है, तो ये होगा।

0: ओके जी 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, साथ साथ मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. और मैसेजेस और कमेंट्स बहुत सारे आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. सो कमेंट्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जी. और अमार रमेश कुमार खत्री हमें सुन रहे हैं और बहुत सारे नाम लिख भेजे हैं आपने. अब्दुल रजाक हमारे से मौजूद हैं, रेहान खान भक्कर से हमें सुन रहे हैं, सॉरी रेहाना खान आपको मैंने रेहान खान बना दिया. ओके कोई बात नहीं, कॉल्स लेना स्टार्ट करते हैं जी. सो सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं.
1: हाफिज लखमीर.
0: हाफिज लखमीर, मुझे ये बताएं टंग ट्विस्टर बोलेंगे.
1: जी बताइए क्या करेक्टर है.
0: टंग ट्विस्टर ये है कि फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए.
1: फालतू?
0: हाँ जी फालतू. रुक जाए. अच्छा और कुछ कहेंगे.
1: हमें गाना सुनाइए. कल आपने मेरा गाना प्ले नहीं किया था.
0: कौन सा
1: गाना? बहुत बड़ा गाना यार, साल मौलाई का गाना है. मेहरबानी करके प्ले करो, आपकी बड़ी मेहरबानी.
0: ओके जी प्ले करते हैं. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और 03000113488 एक और कॉलर. हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम. वालेकुम
0: जी, खैरियत है. कौन कहाँ से?
2: शहर गुलाब निगार कोट बशन फार्म से. शहर गाजी खान रिंद.
0: गाजी खान रिंद भाई कैसे, ठीक ठाक?
2: अल्लाह का शुक्र है भाई, आप सुनाओ.
0: अच्छा मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं.
2: जी जी बिल्कुल सुना.
0: ओके तो टंग ट्विस्टर सुनाएं.
2: हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे.
0: सुना दो. नहीं गाना नहीं. हेलो भाई, गाना नहीं. टंग ट्विस्टर सुनाए.
2: फहद ने फोम वाली फाइल में फालतू फोम फिट किए. फोम वाली फाइल में फालतू फोम फिट किए. फहद ने वाली फाइल में फालतू फोम फिट किए. फहद ने फोम फाइल में फालतू फोम फिट किए. फहद ने
0: ओके जी. और कुछ?
2: मैंने तो धुन में सुनाऊंगा आपको.
0: गाने वाला सेगमेंट खत्म हो गया भाई मेरे. ठीक है, अपना ख्याल रखें बहुत सारा. अल्लाह हाफिज. 03000113488

0: इसी के साथ नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलते हैं और सॉन्ग के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा मेरे पास और ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.
1: अरे वाह,
0: गया होगा
1: क्या बात है, क्या बात है.

0: बीट और जदीद माइक्रो बीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
5: ढूंढो
1: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

योगी जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और जी हमारा सेगमेंट बोलो तो माने इसमें बहुत सारे लोगों ने टंग टोश कह के दिखाया है, लेकिन हम मजीद और चेक करेंगे कौन कौन अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर बोल सकता है. अच्छा नेक्स्ट कॉलर लेने जा रही हूँ लाइन पे. हेलो हेलो हेलो. ओके जी खामोश कॉलर 03000113488. एक और कॉलर. हेलो वालेकुम अस्सलाम सरदर्द कैसे हो. टंग ट्विस्टर बोलना है सुना है. अच्छा सरदर्द इससे मुझे कुछ याद आया है. काफी है काफी है वो मैं ऑन एयर बताऊंगी. अच्छा कुछ और कहना है. थैंक यू अल्लाह हाफिज. अच्छा क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होता है ना कि जिसको टीचर कहे जिसको जिसपे टीचर को शक हो कि इसको अगर मैं रीडिंग के लिए खड़ा करूंगी इसको तो आएगी ही नहीं, और जब उसको वो खड़ा कर देती है अपनी शक की बिना पे और फिर जब वो रीड करना स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करते साथ ही टीचर उसको कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस बैठ जाए बैठ जाए. वो वाली स्टूडेंट लगती है मुझे सरदर्द. ऐसे स्टार्ट होती है ऐसे स्टार्ट होती है. मैं कहती हूँ ठीक है बस बस ओके ओके आप ओके. अच्छा इसके अलावा जी किस किस ने हमें टंग टोशर कह के दिखाया है वो भी हम आपको बताएंगे. एक बाल लाशारी हमें कमेंट कर रहे हैं नाइस शो लग रहा है इनको ओके. अच्छा और इसके अलावा जी गाजी खान रिंद का गोट बाशिम खान रिंद से मैसेज आया है. कहते हैं शेर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फायजा अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कोनेन जेरा बाजी आपको शो आपका शो सुन रहे हैं. आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच. और अपना आप बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. और इसके अलावा जी हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ चलेंगे एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और कौन सा होगा मेरे ख्याल से हम सुनेंगे ये वाला गाना जो कि मैं अब प्ले कर रही हूँ. सुनते हैं एंजॉय करते हैं आगे चलते हैं.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब।
0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और आप सुन रहे हैं किनारे, ब्यूटीफुल सॉन्ग. और सॉन्ग के साथ साथ आज का जो हमारा सेगमेंट रहा है जी, बोलो तो माने. और बोलो तो माने में आज के जो विनर्स हैं ना वो है तीन, जिसमें से हाफिज लखमीर और दूसरे गाजी खान रैन और तीसरे सरदर्द. तो ये तीनों आज के विनर्स हैं और इन तीनों ने बहुत अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया है. और लास्ट एंड लकी कॉलर को भी इंटरटेन करेंगे, चेक करेंगे जी कौन है लास्ट एंड लकी कॉलर. हेलो
1: हेलो, अस्सलाम जी मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम जी. सागर भाई
1: दोबारा लग गई मैम,
0: दोबारा लग गई. आज की अच्छी बात बता दें.
1: आज की अच्छी बात ये है कि मैम गर्मी बहुत ज्यादा है. मैंने पहले लिखा हुआ था कि बंदों को बोल दो कि पानी ज्यादा पियो.
0: तो अच्छी अच्छी बात क्या है? हेलो
1: जी मैम, सबको पता है अच्छी बुरी निगाह, सबको पता है. मैं क्या बताऊँ, सोचूँ क्या इसमें.
0: अच्छा वैसे कल भी आप
1: जी जी मैम, तो एक ही जबान, मर्द का जबान एक ही होता है मैम.
0: अच्छा औरतों की दोस्त
1: वो तो आप जानो मैम, मैं तो नहीं बोल सकता ऐसे, मैं अपनी बात करूँगा.
0: हाँ वैसे ये बात है लेकिन मुझे ना उल्टा लगता है. खैर और कुछ
1: चलो ठीक है,
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल. अल्लाह हाफिज़.

यू सो मच. और आज की अच्छी बात हमने सुनी और क्या, और मैंने एक गाना प्ले किया था लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है. सो फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत और इंशाल्लाह मेरी आपसे अब चिट चैट होगी शाम को 7 से लेके 8 बजे वाले ट्रांसमिशन में. तो सुनना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजी रुखसार साइन आउट. अच्छा, जाने से पहले एक मैसेज नजर आया है मुझे. सलाम बाजी जुल्फिकार अली खोड़ो फ्रॉम आखिर बाजी शो नाई से प्लीज प्ले मास्टर मंजूर. कल चलाएंगे लास्ट में. सुनाओ बाजी रुखसार को मयार मिल जाएगी. अच्छा, मैं अब ये वाला ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी दादा नियर नई का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
3: जीएफएम 91.6।
4: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
5: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
6: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

अमरीकी हमलन जे जवाब में ईरानी फौज जा खिते में मौजूद अमरीकी फौज अॾनि ते हमला। पासदान इनकलाब चयो आहे त बहरीन में अमरीकी फौज जे फिफ्थ फ्लेट में कुवैत में फौजी अॾे खे निशानो बणायो आहे। कुवैत में अल इस्लाम ऐं अहमद अल जबार एयरबेस खे निशानो बणायो वियो। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस ते मिज़ाइल फायर कया विया। बहरीन जे घर वज़ारत मौजूद फिज़ा हिकु नीगरी ज़ख़्मी थी आहे। कुझु घरनि खे नुक़सान पहुतो।

वकील ज़ाहिर धुरियन खे सब्र खां कम वठण ऐं जंगबंदी ते अमल करण जी अपील। परडेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरबाबी चयो आहे त खिते में जारी मौजूदा सूरतहाल ते गणती आहे। तकरार ॻाल्हियुनि ऐं सिफारतकारी ज़रिए हल करणु घुर्जे। पाकिस्तान जूं खिते जे अमुन ऐं इस्तक़ाम लाइ सिफारती कोशिशूं जारी आहिनि। इसराइल ऐं लबनान में थियल जंगबंदी बि मस्बत अकबराई आहे। इसराइल खे जंगबंदी मुआहिदे ते अमल करणु घुर्जे।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
0: मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6

0: गर्मी का हो या पड़े ठंड,
1: नॉन स्टॉप लॉट्स ऑफ फन।
0: तबीयत हो डल या छाए सुस्ती,
1: मिलेगी लॉट्स ऑफ मस्ती।
0: ओनली ऑन जी एस एम 88 नेटवर्क।

वाली गुड आफ्टरनून शादी जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सिदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाने के लिए तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी एक बहुत ही प्यारी सी नात के साथ। एक बहुत प्यारी सी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है तो हम सोचते हैं कि वाली जो नात है ना ये आप लोगों के समातों की नजर करते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी जहां जहां तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे कि कहां कहां पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आई हूं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि ये सवाल जो है ना वो मुझे आप लोगों से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आजकल जो है ना वो मोबाइल के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है, थोड़ा सा क्या मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है। आजकल हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएंगे उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना मोबाइल है ना ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सरवाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर्स, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए वहां पर।

को हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक और शेयरिंग दिया करें, ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सकें कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते, तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब आप लोगों के लिए।

जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहाँ से मालूमात लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, आपके गोट में, आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा। इसी के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के। फर्ज कर लें जरा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता। ओके जी, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, खुश शाही जी सफा खुश ताम बताया की आयो। कहते हैं कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बिल्कुल जी। और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आ कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। और हिदायतुल्लाह कहते हैं हमारे कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल आइन सिदरा, आज ये सॉन्ग चला दी असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थी, लिंक भेजू। बिल्कुल जी, आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। और वफा मीर मुनवर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलाम, खुश आमदीद। और मोलाई मुजाहिद बोजार में सुन रहे हैं ठूक चूसल से, अस्सलाम वालेकुम सिडो जी, केड़ा हाल आहिन, उम्मीद तो बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा, असा तमहां के शो में वेलकम था चूं, असा भी तमहां के शो में वेलकम था चूं, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, वेलकम मोहम्मद जमान भाई। और मोहम्मद अली खोसू हमें सुन रहे हैं मटियारी से, मोहम्मद अली खोसू भाई आपका भी वेलकम करते हैं। साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और उसके अलावा अदनान नूर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते आरजे गोइंग वेरी वेल एनर्जेटिक स्टार्ट, बहुत शुक्रिया अदनान नूर आप हमारे साथ मौजूद है। और हिदायतुल्लाह कहते हैं अदीब तूने नोट किया है कि तुम्हारा तो है लेकिन घर से बाहर नहीं चलता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती जो चलती तो है लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती तो टेंशन ना ले। और किशोर भाई कहते हैं कि हमें तो आदत है इंतजार करने की, तुम करवाती रहो हम करते रहेंगे। सलाम अदी, खुश आयो, यस माँ ठीक ताम बजायो, अज भला अदी चाहे तो वह खैर ताए। और कहते ओ नो ये क्या पूछ लिया आज। बिल्कुल जी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछ लूं। अशोक कुमार हमें सुन रहे हैं, अशोक कुमार भाई ही लो एस एन आर बाणी, वालेकुम असलाम, कहते ओ माई फेवरेट आर जे, आप कैसी हैं, लिखते हैं वेलकम टू द शो व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद। और मोलाई मुजाहिद बोजदार कहते हैं सिडो जी आज एक सॉन्ग प्ले करेंगे पाकिस्तानी मूवी का, ये दिल आपका हुआ सॉन्ग वो लड़की है या जादू। सिडो जी लाहुती साजन चांडियो भी आपका शो सुन रहा है, अच्छा यानी कि ठीक है जी, गाना आपने अच्छा बोला है तो लाजमी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया, आप दोनों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका फोन सेल फोन मोबाइल ले लिया जाए तो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करेंगे बताएं मुझे जल्दी से। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595। डायल करते जाइए, खूबसूरत होते जाइए। यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज। अब आपके खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।

के हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंची आवाज।

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अलग अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग एबिलिटी। मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज
5: वापस मिल गया आपको। ये ट्रिक तो मेरे ख्याल में लड़कों का जो ना, उनको थोड़ा गुस्सा आ जाए वो घर के बर्तन तोड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा मत किया करें भाई। और न खा अलावा जिको आ कहते हैं गानों, हाँ गानों हलाएं तो तानो, थोड़ा सबर करना करो। दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और न खा अलावा वासु भाई कहते अदी सडो जवाब मां पंजन कबूतरन सा हफ्तो गुजारे वेंदस, उन्हनि खे उॾारण ऐं दाणो ॾे उन्हनि सां टाइम पास थी वेंदो आहे। इहा बि ॻाल्हि आहे, कबूतर ई माण्हू अलॻि ई दुनिया जा माण्हू हूंदा। सही आहे बाबा, सही आहे, इंजॉय कयो पंहिंजी ज़िंदगी। और नज़ीर खोसो में सुन रही है बलोचिस्तान से, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम। और शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। अच्छा उन खां अलावा हिन जी दर्द अजकिल वक़्त है तो आज के बाद चलू होता है, अब ये नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक कोई उसे मुमकिन ना बना दे। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है। दर्द दिल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हिदायत ला कहते हैं न बाबा ओनली जियो। अच्छा दिलीप कुमार मेघवार हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप कुमार भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं। और तमाम के सारे शो पसंद अच्छी पियो, मोहब्बत हुआ प्यारे भावन जो। किशोर भाई कहते हैं माँ अच्छा अगर पाता हूँ तो घोट लगता हूँ, यही गाल जदे मर्द जो है अच्छो अगो पाइन आ वाकई घोट लगन है। इन लाइन मानू अना ती वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कोन कन पाया, तो उन्होंने चवंदा बाबा था सोचो एत न सोची न करो, जो करणो सो करणो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तवाज हर तरह जो प्रोडक्ट मौजूद है, यानी कि हाँ तवाजी का भी बहाने बाजी न हलंदी, छो तो इतने तवे हर एक प्रोडक्ट मिले तो, जिनमें तवाज नाइट क्रीम भी है, तवाज साबुन भी है, फेस वॉश भी है, एक नी ट्यूब भी है, अब खेव जी मानू आन अलग अलग मसलन सा फेस कन पाया, उन्होंने चेहरे ते अलग अलग मसला तवे चेहरे ते दाणा या फिर तवे का सुठी नाइट क्रीम नथी मिले, तवे का फेयरनेस क्रीम नथी सुठी सूट करे, तो बाबा तवे वाई एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह जो प्रोडक्ट खड़ी आयो है, एवोकाडो एलोवेरा मिल्क से तैयार कई वही है, ही टई चीजू उन्हें अंदर एड कई अथस तदें वाइट एज ब्यूटी क्रीम तैयार थी है। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो तवी स्किन के फ्रेश बणाईंदी है, फेयर बणाईंदी है, क्लियर बणाईंदी है, सोनो बणाईंदी है, सो मर्द हज़रात हुजन या खवातीन तव बई इस्तेमाल कर सो था। उनखा अलावा जी मू दाणन की वजह से परेशान है, शदीद वारो परेशान है, तो तवाज ला डॉक्टर पिंपल एंटी, डॉक्टर पिंपल एंटी एक ट्यूब जो है बाबा ढो जबरदस्त ट्यूब अव उन मे खास करे जी पाने चेहरे के दाणन की वजह से परेशान है, तो अगर तवा भी एकनी के खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिंपल एंटी मौजूद है, आयुर्वेदिक फार्मूलो है जनाब, तवे एकनी से फाइट कन्द है, तवे एतो पुरानो निशान है जो तुम रिमूव करण चाहो था तो तुम हासिल कर सको। उनका अलावा इस्तेमाल करने तरीकेकार भी बुधाया थी, पर पे सब प्रोडक्ट के बारे में तो बुधी वो वाइट वो एलोवेरा मिल्क तैयार कयो वयो आहे, बाकी जेको फेस वॉश आहे उन जे अंदर वाइटामिन सी मौजूद, ॿिन्ही में डिफरेंस आहे। हुन खां अलावा अगरि तव्हां सोप लॻाईंदा आहियो त सोप लॻाईंदा, अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा ईज़ी। ऐं अगरि तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जे बारे में नथा ॼाणो त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त वाइट एज लवली क्रीम हिकु उहा वाहिद क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम सां गॾोगॾु हिन जे

सनस्क्रीन भी एड कई वही है यानी कि इनमें डिसो था तवां जला केडो मतलब इनन फायदो सोचो है तो जेके भी असना सोना सोना लिसनर असा के बुदन पया जेके जेके सोना मानु पानी खूबसूरती जो ख्याल रखन चाहन था तो उन जला बिल्कुल उन्हीं तरीके जो प्रोडक्ट हुजन लाजमी है तो अगर तवां भी वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमाल करन चाहो था तो तवां के या खबर हो जे बाबा वाइट एज लवली क्रीम जगह ही एकड़ी फेयरनेस क्रीम आए पर सिर्फ फेयरनेस क्रीम ना है जे अंदर एड़ी चीजों एड थियल आए जे रेडिएंट अल्ट्रा वाइटामिन से तैयार कई वई है जिने अंदर ट्री ऑफ वाइटामिन जा कैप्सूल एड आए ट्री ऑफ वाइटामिन जा कैप्सूल यानी कि तमा जी स्किन दे कोई भी वाइटामिन जी कमी आए तो पूरी थी वेंदी जदे तमा वाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करना है जे अंदर वाइटामिन डी आए वाइटामिन ई आए वाइटामिन सी आए वाइटामिन बी3 आए उन के अलावा सनस्क्रीन भी एड अथस जे तमा के अलग से सनस्क्रीन लगानो न पवे हेड़ी गर्मी जी मौसम में तमा जी स्किन ते सनस्क्रीन भी लाजमी जरूरी हुंदो आए अगर तुम सनस्क्रीन नथा वठो या फिर नथा इस्तेमाल कयो तो तुम्हें टेंशन वठन की जरूरत ना है तुम वाइट एज लवली क्रीम लगाए सको था वाइट एज लवली क्रीम तुम्हारे स्किन ते ग्लो भी दींदी और तुम्हारे स्किन के प्रोटेक्ट भी कदी उन सिज के असरात का जो सिज जहा असरा तुम्हारे चेहरे के नुकसान पहुंचाई समझो था सो वाइट एज लवली क्रीम तुम डी जो लगाए सको था रात जो लगाए सको था नंढा बार हुजन वड्यू मायू हुजन मर्द हुजन कुराड़ा आयो था सब हणी सको था छो तो वाइट एज लवली क्रीम जी ना एतरी जबरदस्त क्रीम है जी तुम मजो दई छी तो वाइट एज लवली क्रीम तुम लगायो और तुम्हारी खूबसूरती सफाई चमकंदी वतंदी उन अलावा बो अलावा सोप और फेस वॉश की अगर गाल करें तो वो भी ऑल स्किन टाइप के लिए तुम बिल्कुल हर कोई इस्तेमाल कर सके बाकी हाँ लगाने का तरीकेकार तो बिल्कुल लगाने का तरीकेकार यही आए तो अगर तुम वाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर वाइट एज की ब्यूटी क्रीम तुम रात के टाइम इस्तेमाल कर सो तो एक नाइट क्रीम है रात के टाइम तुम इस्तेमाल कर अलावा फेस वॉश तुम पे लाजमी कजो फेस वॉश कर वाइट एज ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर सो अलावा अगर तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगाने चाहो था चेहरे के दाना उन्होंने खत्म करने के लिए तो तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब रात के टाइम इस्तेमाल कर अलावा तुम फेस वॉश लाजमी कदा कर कोई भी प्रोडक्ट तुम लगा था वाइट एज लवली क्रीम हणो था या डॉक्टर पिंपल ट्यूब हणो था या वाइट एज ब्यूटी क्रीम हणो था इन इस्तेमाल करने का पेड़ तुम मुंह लाजमी धोनो है सही आज मुंह धो पे फेस के सफा क्लीन कर क्लियर कर प्रोडक्ट अप्लाई कर स्किन तदी ही प्रोडक्ट है सही तरीके से रिजल्ट दी है सो प्रोडक्ट के सही तरीके से इस्तेमाल अगर तुम क्या तो बिल्कुल सुनो रिजल्ट मिलो है सो सुे रिजल्ट हासिल करने सही तरीके से इस्तेमाल करना पवंदा तो बिल्कुल तमाम इस्तेमाल करना हलो और पानी खूबसूरती के वधाईंदा हलो बिल्कुल तमाम भी हसीन और प्यारा थियण चाहिंदा हुंदा तो तुम वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कर सको था तुम एरिया में तुम्हारे गोठ में तुम्हारी सिटी में नथा मिलन तो पोए तुम डायल कयो 03-15-799-0595 ओके जी डायल कीजिए एक नंबर और साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करती जाइए और जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब भी देते जाइए तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें आप लोगों से आपका मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप कैसे गुजारने वाले हैं क्या करेंगे उस एक हफ्ते में अगर आपका सेल फोन आपके साथ ना हो तो

आप प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो सोप के साथ इस्तेमाल कर रही हैं और मैं खुद व्हाइट एज लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है। और जी ये हमारे साथ माडली बिरोही फ्रॉम लाड़काना। इमरान भाई क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और उसके अलावा हेन जी ये कहते हैं बाजी टॉपिक का जवाब है, मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा। पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है। और इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ शुक्रिया। फकीर मोहम्मद हमारे साथ ही पाक आर्मी पन्नू आखिर से कहते हैं साकी आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह खुश रहें, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहते अस्सलाम वालेकुम, बाजी टॉपिक है मोबाइल के बिना एक हफ्ता क्या एक मिनट भी नहीं रह सकता, अब आगे कहूँ। और ये हमारे साथ एक कौशल कहती है, जन्नत आप कैसी हैं, आपकी जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कौशल आप कैसी हैं। और कहती हैं वो तो मैंने बताया था ना, ये आपकी गलती है कि आप शो सही से सुनती नहीं है। और उसके अलावा क्या कहती है, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, कल चलें फिर आपने साइलेंट होकर शो सुना फिर

बताएं आपको कैसे लगा। अच्छा, जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज जो ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है। और ये कौसर कहती है कि जन्नत अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे। मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत कुछ कर लेती हूँ मैं, वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ। अच्छा साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ, आपका शो मस्त है जैसे ठीक है। और कहती टॉपिक भले ले जाओ मैं तो चली जाऊंगी अपने गांव। हाँ भाई गांव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। एम कहती दिलबर आपी आपकी कल से मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी अजीब हो गई, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल। आप दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक हो जाऊं। और न खा इलावा जी को आया था जेकी मानो असा के फेसबुक ते बुधो पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हले और तमाजी शेयरिंग मुखे थोड़ी कम नजर अचे पई ई छू कंदा आयो। अच्छा शेला कुल जो गानो हलायो थम, मैं शेला कुल जे गाने हलाने संगड असांगे लुबना नजर अच्छी वही। लुबना कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ जी, आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं, नाइस शो एंड नाइस सॉन्ग शेला गुल का। हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा था कि शेला का गाना सुनकर आप जरूर आएंगे।

हाँ जी बैठी तू अच्छी बैठी तू अच्छे सबर कर समंदर गांगरू हमारे साथ है। समंदर भाई कहते हैं हाय आरजे एंजल सिडा कैसी है। नजीर अहमद गांगरू हमारे साथ हैं। ओके जी वेलकम वेलकम। और आदिल कहते हैं कि जेकडे मुझो मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमा आईने सा सेल्फी कढंदस पोए समझ में ईंदी तो अपलोड कंदासी कडें अपलोड कंदो जदी आईने सा सेल्फी कढंदा तो अपलोड किए थी अच्छा तो हर 5 मिनट बाद खीसे में हथ हणंदस मोबाइल न मिलंदो तो पंजो कन सिकींदस अमर की चवंदस मुझो दिमाग हैंग थी वयो आहे वी स्टार्ट जो बटन काडा आहे किथे आहे अच्छा आई पाड़े जे बारन खा पुछंदस भाऊ वाईफाई जो पासवर्ड होए चवंदा चाचा असा वट भी नेट नाहे हफ्तो पूरो थींदो त मोबाइल के ए भाकुर पाईंदस जी गुम थियल प्यारो वापस मिली वेंदो हुजे अच्छा ये तो बड़ी भाई आपने अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी। अगर वाकई सेल फोन हमसे ले लिया जाए तो शायद कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ओके जी हसन कहते हैं टॉपिक भले दह डिया मोबाइल खसे छड़ने पर वाई कोने हाँ कुछ मानो अड़ा भी हुंदा है। अच्छा वासु भाई कहते अदी सिडो गाल तई सिद्धि मां सिर्फ वाटेश वारन जो साबुन वठंदुम ता साबुन वठो फेस वॉश वठो पर वठो तो सही ना हिकरी से इस्तेमाल करना तो तांगे खबर पंदी त बाबा वाकई प्रोडक्ट में दम आहे तो तमा लाजमी वठो इस्तेमाल कयो। उनका अलावा दर्द दिल कहती टॉपिक चंदा क्या करती मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं तो आज सोच लेना आप सोच कर मुझे बताएंगे अगर एक हफ्ता आप लोगों से फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले क्या कुछ करेंगे जल्दी से बताएं प्रोग्राम का ऐसे बनते जाएंगे। यहाँ पर टाइम हो जाता है कि हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाएंगे उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो लई।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: कावड़ जो इज़हार, SPST जे चेयरमैन सेक्रेटरी ऐं कंट्रोलर जमल जोगा गिरफ़्तारी वारनि जारी करे छॾिया। टिनि ॼणनि खे तोहीन अदालत जो नोटिस गुज़ारी, सूमर ते पेश थियण जो हुकम। अदालत रिमार्क थींदे चयो अदालती हुकम ते अमल न थियण ते बाबति जवाब ॾिनो वञे।

अमरीका ईरान जे अमन गारन दौरान हिकु वेझे हमला अमरीकी फ़ौज तेहरान ऐं बंदर अब्बास ते बमबारी टामहॉक मिज़ाइल जो इस्तेमाल जानी नुक़सान थियण जा इतला न मिलिया सेनका मूजिब हमला ईरानी जहाज़ बाद कया गाजन खे हाणे रोकियो वियो आहे सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौज 49 टामहॉक मिज़ाइल ईरान ते फायर कया आहिनि तेहरान ते मौजूदा हमलनि में इसराइल शामिल नाहे जेकॾहिं ईरान मुआदो न कयो त बमबारी करे संदन हालत ख़राब करे छॾींदासीं अमरीकी हमलनि जे जवाब में ईरानी फ़ौज जा खिते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अॾनि ते हमला पासरान इनकलाब चयो आहे त बहरीन में अमरीकी फ़ौज जे फिफ्थ फ्लेट ऐं कुवैत में फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो आहे कुवैत में अली असलाम ऐं अहमद अल जबार एयरबेस खे निशानो बणायो वियो बहरीन में शेख ईसा एयरबेस ते मिज़ाइल फायर कया विया बहरीन जे घर वज़ारत मौजूब फिज़ा में तबाह कयल ईरानी ड्रोन जो मलबो किरण सबबु हिकु नींगरी ज़ख़्मी थी आहे ऐं कुझु घरनि खे नुक़सान पहुतो

0: मेहमान नवाज धरती,
1: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए FM की आवाज,
0: जीए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातनी और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जिनके बारे में जानकर आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। और इससे रिलेटेड जरा हम बात करेंगे यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो इनके क्या फायदे हैं और इनको आप किस तरीके का ना इस्तेमाल करने वाले ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ माधुर मोहम्मद आम तो लोगों को ना वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। ओके जी सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें एक हफ्ते के लिए आप लोगों से आप लोगों का सेल फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप किस तरह से गुजारने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे? ठीक है जी, जल्दी से बताइए। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताते जाइए। फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं, 8821 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। और रेहान अली हमें सुन रहे हैं, कहते गुड शो, थैंक यू वेरी मच। रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी।

एम आई एम सारी कहते हैं यूप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप, मुझे फ्री में दिलवाए ना। अच्छा चले मैं कोशिश करूंगी क्या, ठीक है। और कहते हैं मुझे भी मूलाए पारत करायो वाइट एश आई डी स्किन वारन के कसम अथव मासी चपरान जो, न न मासी चपरान जो कसम न जो, खैर तवान जी लाए जेको है असा अवेलेबल कराए छिया तो हाने तवान के जेको है फ्री में भी जाराइंदा, टेंशन न वठो बस तवान तवान जेको आ त चिटे थेने जे लाए थोड़ो मेहनत कंदा कयो। तवान के या चीज खबर हो जन गुरे मार्केट में केड़ा केड़ा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आ आई केड़ा केड़ा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जन सा गड उई तवान जी स्किन जे लाए जरूरी आ यार, त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तवान जे एरिया में मिलन था त बिल्कुल तवान के जारींदा, तवान गिफ्टिंग वो सिस्टम स्टार्ट कर, थोड़ा टाइम गुजरन दू।

0: अच्छा अशफाक कहते हैं कि सिदरा लाहौर मां कहिड़े दुकान तां मिलंदा प्रोडक्ट लाहौर मां तव्हां मालूमात वठो नथा मिलनि त पोइ मूंखे ॿुधायो किथे किथे अवेलेबल नाहिनि त असां अवेलेबल
1: कराईंदासीं।
0: अच्छा ऐसन कहते हैं पर तव्हां त पोइ असांखे मोबाइल जी ज़रूरत नाहे। अच्छा माना अगरि असां शो कयूं था तॾहिं तव्हां मोबाइल जेको आहे इस्तेमाल कयो पिया। चलो इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे, इहा बि असांजी कामयाबी आहे। अच्छा ये अशफाक क्या कहते हैं, चलें ठीक है ठीक है। और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है, रिहाना आपको वेलकम करते हैं। और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, अनवर भाई तवाजो मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो प्यार टॉपिक चो था बो मसलो ना है पर तवाजो प्रोग्राम एफ बी की बुधंदस हा वाकई यह सोचने वाली गाल। एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे मां ब्लैक थी वेंदस अल्लाह न कंदो तो मां वाइट वाइट थी वेंदा पर भाई तमा थोड़ो सबर कर थोड़ो वेटिंग कयो सही
1: है।
0: छो तो कड़ी कड़ी मानुन की वेटिंग जो फायदो मिलंदो आए सो वेटिंग करण भी सुठी गाल है। तव्हां जेको नंबर ते राबतो करे वठो ठीकु आहे। अच्छा कुझु ॾींहं पहिरियां हिकड़ी ॻाल्हि थी हुई उहा मां तव्हां सां शेयर कंदसि पर हिते ॾिठो वञे त टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं इहा ॻाल्हि मूंखे वेठी वेठी यादि अची वई। जॾहिं एम चयो त मूंखे फ्री में गिफ्ट ॾियारायो तॾहिं इन ॻाल्हि ते जेको आहे मूंखे इहा ॻाल्हि यादि अची वई। मां तव्हांखे ॿुधायां थी थोरो सबर कयो, पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट वठण जी तव्हांखे जेको आहे न तव्हां सोचो था ऐं कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां वठी चुका आहियो इस्तेमाल बि कयो पिया। छो त जेके माण्हू अञा सोचनि था न उन्हनि जे लाइ इहो आहे त बाबा तव्हां जल्दी वेठो देर न कंदा कयो, अगरि तव्हां बि देर कंदा त पोइ तव्हां बि ब्लैक ब्लैक थी वेंदा। पोइ मां इहो नथी चाहियां त तव्हां ब्लैक थी वञो, तव्हां वाइट वाइट हुजो ऐं तव्हां सोणा सोणा हुजो ऐं तव्हां वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि ॿिन्ही जो इस्तेमाल कयो। उन खां अलावा जल्दी मोटी अचां थी तव्हां वटि हीअं अचां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट Age and Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and Skin Beauty Products. Lagate rahiye, khoobsurat hote rahiye.
1: Assam bhi brand saja yaar bhi brand thi. Assam bhi brand saja yaar bhi brand thi.
2: वतन की मोहब्बत से सरशार सरजमीन सिंध अब गूंज रही है।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफ एम 91.6।
4: इट्स 2:30 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हमें डायमंड क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा अलीजा टॉपिक का जवाब दे रही है कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती है, आपके मोबाइल से करती है, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दब? अच्छा किशोर भाई कह रहे मानू अलाई कि साइलेंट थी शो बुधन था वो भी तो जड़ी आरजे जो नामुमकिन वो वी मिंट अलाई कि पान के रोको मां भी सोचा अलाई काड़े वही वो मुख्य लगे पे अज भी तुम सुमी प्यार न डी वागू

अच्छा साइमा, तो गाना कौन सा था वो भी बताए मुझे जरा। अच्छा शोनी कहती है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से लूंगी, क्योंकि मैं सारी चीजें वहां से लेती हूँ, अगर वहां पर ना मिले तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से परचेज करके जाइएगा। ठीक है, देखिए मुझे कितना आप लोगों का ख्याल है।

अच्छा एम अंसारी कहते हैं सिडो मेरा खर्चा आपने बढ़ा दिया, कोई मुझे कह रहा है कि शाम तक मिल जाए वाइट एज के प्रोडक्ट्स। सच्ची बोले ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा खर्चा भी कर लिया करो। और वासु भाई कहते अदी सिडो असांजा ही बकला के तमा सा गड प्यारा गुजरंदा है, मुझा भी यकीन करो। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं एक हफ्ते के लिए मेरा कोई सेलफोन ले जाएगा, पूरा हफ्ता वो मुझे भी ले जाए अपने साथ। चले ये ठीक है। अच्छा आदिल तमाम गाना सुबह ही बुधंदा से ठीक है।

हा बाबा एती गाल ते छो नाराज थी वेंदा ढोल वरी पो मनीदा नहीं है अच्छा ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है और इसी के साथ साथ जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एश

ट्राई करके देखिएगा। बिलाल अली कहते हैं हर रोज कोई आपके शो की लिंक मेरे आईबी में शेयर करता है, यार सोचा ओपन करके देख लूं। चलिए आपने बहुत अच्छा किया। वैसे तो अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होने को आ रहा है बिलाल, सो आपको वेलकम करते हैं। कल आप मुझे 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? अला किशोर भाई कहते नन्ना तवान जो शो इत मुखे एक्टिव रखे थो अल्लामा सदको। मोहम्मद सलमान कहते आज के सवाल, आज का सवाल ना ऐसा है जवाब देने से पहले मायूस हो जाते हैं। बात वही क्यों पता करवाए ना, मैंने जानना था।

ये गलत फहमी बिल्कुल हो जाती है कि सामने वाला हमें समझ गया है। यही वो मकाम है जहाँ दिल सबसे ज्यादा लुटता है, क्योंकि हर मुस्कुराहट सच नहीं होती और अपनाइयत खालिस नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं कि हमें खुली किताब बनाकर हमारे लफ्जों से अपने फायदे की मतलब निकाल सके। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब तलाश करते हैं। वो खुद को आपका खैर ख्वाह जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई और नहीं होता।

ओके जनाब, से प्रोग्राम व्हाइट एज एंड एशियन ब्यूटी शो का जो वक्त है वो खत्म होने को आ चुका है। सायमा मीर, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे डाटा करी बच्चों को। और ये जी हजार खान भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गुलाम रहीम बलोच हमें सुन रहे हैं, आपको शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और यहीं पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है डेली बेसिस के ऊपर। और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह हैं, जिनके फीडबैक रह चुके हैं उनसे माजरत करते हैं, जिनके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में उनसे जनाब यही कहूंगी कि कल आके आगे गाने लगा दूंगी। हाँ वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहीं मैं गजनी तो नहीं हो गई। मैं वाकई बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ और प्रोग्राम में बहुत, लेकिन वो भी भूल जाती हूँ। वाकई लगता है कि मैं अब गजनी होती जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा वाला, मुकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल।

रखे हो तो आवाज भी सुनती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: तब भरोसे
2: अरकन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन ऐं बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो वधीक पाणी पियो ऐं महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत ए सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सेलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो
3: अज़रा बहन जरा बात तो सुनो भागो
4: नहीं समझदारी से काम ले सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 1122 पर राबिता करें महकमा सेहत हुकूमत सिंध
5: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े हैं बस एक चीज का इंतजार

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर।
1: वफाकी हुकूमत जे मुल्क में महंगाई 38% ताईं घट करण जी दावा, तरक्की जी शरह हदफ खां घट थियण जो एतराफ़, परदेही नाणे जा ज़खीरा बि मुस्तहकम हुअण जी दावा। वफाकी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे चैलेंजेस बावजूद मैशियत सुठी कारगर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मैशियत जो काथो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब 10 करोड़ डॉलर आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह बि 3.7% रही। खेते सूरत हाल ठीक हुजे त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञूं हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.99% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.7% रही आहे। पाणी बहरान ते वरी वज़ीर मुराद अली शाह जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त। पाणी खोट बराबरी जी बुनियाद ते विरिहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शुरू चयो आहे त इरसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी खोड़ खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी खोड़ दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखे पंजाब खां पहिरियां थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलण घुर्जे। पंजाब चश्मा जेलम केनाल समेत फिल्ट केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुड्डू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी खोड़ सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी खोट आहे त बराबरी जी बुनियाद ते विरिहाई वञे।

सिंध ऐं बलोचिस्तान में पाणी जी शदीद खोट वारो मामिलो क़ौमी असेंबली ताईं पहुची पियो। पीपल्स पार्टीअ में सिंध ऐं बलोचिस्तान जे घुर्ज मूजिबि पाणी ॾियण जो मुतालबो

वरी चयो त वफाकी वज़ीर जा अंग अख़र दुरुस्त न आहिनि। विसा पाणी वारी 1991 ठह ते अमल दरामद न करे रहियो आहे। सिंध में सूरत हाल संगीन आहे। पीपीएम इन शाज़िया मरी चयो त वफाकी वज़ीर जा अंग अख़र दुरुस्त न आहिनि। विसा पाणी वारी 1991 ठह

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time chat is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: बुलेटिन मार्स तो सुबह 11 बजे का शाम 4 बजे तक खास एहतियाती तदबीरों अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान شدید जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली मान नवाज
3: ताडू सुठो
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: की
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: शहर जिंदगी की लहर दो कमर
1: वो अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सा पेश कयो वयो
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलावी डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
1: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे खां शाम 4 वगे ताई खास अहिद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सा पेश कयो वयो जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान
3: यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

कांच की खुशियां बिकती होती, कांच की खुशियां बिकती होती और दुखों का ठेला होता, एक टके में आंसू आते और मोहब्बत चार टके में, पांच टके में सारी दुनिया मुफ्त हंसी और मुफ्त सितारे, चांद भी टुकड़े टुकड़े बिकता, ख्वाहिश नाम की चीज ना होती, हाथ बढ़ा के सब मिलता, हम चाहते तो मर जाते, ना जी चाहता तो जीते रहते, ऊंचे नीचे शहर ना होते, पानी पर भी घर होते, काश के अपने पर होते, और वो गहरा नीला अंबर, सात समंदर पार के साहिल, जंगल नदियां गिरता पानी, सब कुछ अपना धन होता, काश के खुशियां बिकती होती, काश के खुशियां बिकती होती, खुशी ओढ़ के सोते, रातें दिन भर रुकती होती, काश के खुशियां बिकती होती, काश के खुशियां बिकती होती। मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सब के सब खो गए हम बड़े हो गए, मुस्कुराहट तबस्सुम हंसी कह कहे, सब के सब खो गए हम बड़े हो गए, जिम्मेदारी मुसलसल निभाते रहे, बोझ औरों का खुद ही उठाते रहे, अपना दुख सोचकर रोए तन्हाई में, महफिलों में मगर मुस्कुराते रहे, कितने लोगों से अब मुख्तलिफ हो गए हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, और कितनी मुसाफत है बाकी अभी, जिंदगी की हरारत है बाकी अभी, वो जो हमसे बड़े हैं सलामत रहें, उन सभी की जरूरत है बाकी अभी, जो थपक कर सुलाते थे खुद सो गए हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, खत्म होने को अब जिंदगानी हुई, जाने कब आई और कब जवानी हुई, देखते देखते क्या से क्या हो गए, जो हकीकत थी अब वो कहानी हुई, मंजिले मिल गई, हम सफर खो गए हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए।

उन्हें अंदाज बदल लेना, आवाज बदल लेना, दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अगयार वही रखना, अहबाब बदल लेना, आदत ही बना ली है शहर के लोगों ने, रस्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज अगर दो तो कतरा के निकल जाना, हर एक से जुदा रहना, हर एक से खफा रहना, हर एक का गिला करना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रस्ते में रुला देना, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। वेल जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब वक्त है कि आपसे इजाजत लेनी है हमने। तुम्हें ना फिर से सताएंगे हम खुदा हाफिज। तुम्हें ना फिर से सताएंगे हम खुदा हाफिज, कि अब ना लौट के आएंगे हम खुदा हाफिज। रखेंगे तुमको बहुत दूर अपनी नजरों से, मगर ना दिल से बुलाएंगे हम खुदा हाफिज। हमारी जात से तकलीफ खुदा हाफिज, अगर मिलेंगी ना खुशियाँ तुम्हारी निस्बत से, गमों का जश्न मनाएंगे हम खुदा हाफिज। निकाल दो ये परस्तिश की आरजू दिल से, तुम्हें खुदा ना बनाएंगे हम खुदा हाफिज। वेल जनाब, जो लोग शमन की आवाज को लाइक करते हैं, हम सबके लिए शमन अली मिराली का उर्दू सॉन्ग एंजॉय कीजिए। इस ट्रैक को मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस इवनिंग।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप
1: तरक्तेब चवाया था चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तान मईशत जो खातो 452 अरब $10 करोड़ थी वियो आहे। पाकिस्तान वट नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब $10 करोड़ आहिनि। माशी तरक़ी जी शराबी 3.7% रही। हिते जी सूरतहाल ठीक हुजे त 4% ताईं तरक़ीअ वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती ख़सारो 0.5% आहे। प्राइमरी बैलेंस ज़रई शोबे में 2.79% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾियुनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.5% रही आहे। सिंध में पाणी बोहरान ते वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो वज़ीराज़म शहबाज शरीफ खे ख़त। पाणी खोट बराबरी जी बुनियाद ते विरहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इरसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी खोट खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी खोट दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखी पंजाब खां पहिरीं थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा जहलम केनाल समेत फ्लड केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुडू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी खोट सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी खोट आहे त बराबरीअ जी बुनियाद ते विरहाई वञे। सिंध ऐं बलोचिस्तान में पाणीअ जी शदीद कोट वारो मामिलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी MNS जो सिंध ऐं बलोचिस्तान खे घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाणी बाबति इरसा में थियल फ़ैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। सिंध पीउ शामिल हो। PP MNA नवीद कंवर चयो त इरसा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे। इरसा कानून खां मतां फैसला कया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू चयो त इरसा में इतफ़ाक़ी राय सां फैसला थिया आहिनि। अॼु सिंध खे 1,40,000 क्यूसिक पाणी जारी थियो आहे। PP MNA शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त न आहिनि। इरसा पाणी वारी 1991 ठाह ते अमल दरामद न करे रहियो आहे। सिंध में सूरतहाल संगीन आहे।

पाकिस्तानी वजीर आजम फील्ड मार्शल बेहतरीन आहिनि। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फौज 49 टोमोहॉक मिसाइल ईरान ते फायर कया आहिनि। तेहरान ते मौजूदा हमलनि में इसराइल शामिल नाहे। जेकॾहिं ईरान मुआदो न कयो त सदन हालत ख़राब करे छॾींदासीं। ईरान अमरीकी हमलनि बाद आबदा हरमुस खे बहरी ट्रैफिक लाइ बंदि करे छॾियो। आबदा हरमुस मां गुज़रण जी कोशिश कंदड़ बहरी बेड़नि खे निशानो बणाइण जो ऐलान पासदारनि इंकलाब चयो आहे त अमरीकी जारी सबब आबदा हरमुस खे बंदि करे रहिया आहियूं। बहरी बेड़ा नुक़सान खां बचण लाइ आबदा हरमुस तां सफ़र न कनि। पाकिस्तान पारां अमरीका ऐं ईरान में ताज़ी छिकताण ते गणती ज़ाहिर। धुरियन खे सबर खां कम वठण ऐं जंगबंदी ते अमल करण जी अपील। परडे॒ही तर्जुमान ताहिर हुसैन इंदिराबी चयो आहे त ख़िते में जारी मौजूदा सूरतयाल ते गणती आहे। तकरार गालियन ऐं सिफारतकारी ज़रिए हल करण पाकिस्तान जूं ख़िते जे आम लाइ सिफारती कोशिश। इसराइल खे जंगबंदी मुआदे ते अमल करणु घुर्जे।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो लई।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढ़ा मियर नहीं का चीज में आहे रखी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत की मुल्क में महंगाई 38 सैकड़ों तक घट करने की दावा। तरक्की की शरह हदफ का घट थियण जो एतराफ़। बडई नाणे जा जखीरा भी मुस्तकम होने की दावा। वफाकी हुकूमत इक्तसादी सर्वे जारी कर छो। नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकर्दगी डेखारी है। पाकिस्तानी मईशत जो काथो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। पाकिस्तान वट नाणे जा जखीरा भी 17 अरब 10 करोड़ डॉलर्स। मौशी तरक्की की शरह भी 4 सैकड़ों तरक्की वारी शरह हासिल कर वनू हा। मालियाती खसारो 0.7% है। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस है। सरई शोबे 2.79% तरक्की कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक्की कई। वडियन सनअतन की तरक्की की शरह 6.5% रही है। सिंध में पानी की शदीद बोहरान ते वडे वजीर बाद अली शाह वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ के खत लिखी छो। पानी कोट बराबरी की बुनियाद से विरायण है। सिंध के जरूरत मौजिब पानी फराहम करने जो मुतालबो। आप पाशी वारे वजीर जाम खान शोरो इस साल सिंध सा नाइंसाफी कर रही है। सिंध के 41% घट पानी मिली रो है। पंजाब रुगो 10% पानी कोट बर्दाश्त करे पो। सिंध में पानी कोट दौरान डैम भरण जो कहड़ो जवाज है। सिंध में पोखी पंजाब खां पहरी थींदी है। सिंध के घुर्ज मूजिब पानी मिलन घुर्ज। पंजाब चश्मा जहलम केनाल समेत फ्लड केनाल जरिए पानी खड़ी रो है। गुजल साल इन सीजन में गुडू वट 1,35,000 क्यूसिक पानी मिलो। हाँ रुगो 75,000 क्यूसिक पानी मिली रो है। सिंध से गड बलोचिस्तान भी पानी कोट सबब मुतासर थी रो है। पानी कोट है तो बराबरी की बुनियाद से विरा वने।

0: सिंध ऐं बलूचिस्तान में पाणी जी शदीद कोट वारो मामलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी MNS जो सिंध ऐं बलूचिस्तान खे घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन वटू जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाणी बाबति इस्लाम में थियल फैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इन्हनि फैसलनि में सिंध बि शामिल हुई। PPMNA नवीद कमर चयो त इसा सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे, इसा कानून खां मथां खां फैसला कया आहिनि। शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त न आहिनि। इसा पाणीअ वारे 1991 ठाह ते अमल दरामद न पई करे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो। एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
4: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से क्या?
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: है ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारुब लबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो। एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
4: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से क्या?

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88

0: किया है संत जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डूंगर था भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी दाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु राति ईरान मथां ॿीहर ताक़तवर हमलनि ऐं जल्द तेहरान जे तेल ऐं गैस ज़खीरे ते कब्ज़ो करण जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान सां बि उहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जे खारक बेट ते कब्ज़े खे बहितर सम्झा थो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे ट्रंप चयो त ईरान जी बहरिया, फज़ाइया ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़त्म थी चुकी आहे। ईरान माहिदे लाइ ॻाल्हियूं करे पियो पर संदन रवैयो ठीकु आहे। मुमकिन आहे त ईरान के हमलन जो जिम्मेवार अमरीका हूंद, नतीजा भी अमरीका ए संदन सहूलतकार के भोगड़ा पवंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकिय से ईरान जो रद्द अमल। ईरान के नायब परडेही वजीर काजिम गरीब आबादी है ईरान के गालियन ए माहिदे लाए धमकिय से चुकाए न तो सकजे। आरजी जगबंदी जो को भी फायदो न पो थे। वफ़ाक़ी हुकूमत जे मुल्क में महांगाई 38% ताईं घटि करण जी दावा। तरक़ी जी शरह हदफ खां घटि थियण जो एतराफ़। परडेही नाणे जा ज़खीरा बि मुस्तहकम हुअण जी दावा। वफ़ाक़ी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकरदगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मईशत जो खातो 452 अरब $10 करोड़ थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब $10 करोड़ आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह बि 3.7% रही। हिते जी सूरतहाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.87% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.1% रही आहे। सिंध में पाणी जे शदीद बहरान ते वॾे वज़ीर मुहम्मद अली शाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खे ख़त लिखी छॾियो। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी कोट बर्दाश्त करे पियो। सिंध में पाणी कोट दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखी पंजाब खां पहिरीं थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे।

0: ही आहे सिंधजी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू,
1: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक का लबीब का, आपके जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक का लबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: कहती हैं मम्मी, मैं मनोज हूँ उनकी जिंदगी में, अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गही मारू डुगर खा पी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी खड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाठा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीज और जदी में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।